मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मुकेश की आवाज में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यारी वो नहीं जो सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराती है, यारी वो नहीं है जो सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराती है, यारी तो वो है जो हर मुश्किल में साथ निभाती है। आइए सुनते हैं याराना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, अभी आप ये गीत सुन रहे हैं येसुदास की आवाज में फिल्म किस्मत से, और इसी के साथ ही अब हमारा भी जाने का वक्त हो चला है। भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

0: സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് 59 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया. दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह. भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा. भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की. भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई. और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा. और अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है. उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया. स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा.
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है. उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया. राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया. नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा.
5: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है. 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा.
7: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा. आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी. इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी. सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
5: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी. ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे.
8: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहेक श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
10: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि पहली अगस्त से अमेरिका में आयात

0: फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Drobdi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, अब जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के

0: साथ ये नृत्य होता है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है
1: जी
0: जिसे मोरुंग कहते हैं।
1: जी
0: ये मोरुंग होता क्या है?
1: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
1: जी यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
1: जी
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
1: जी
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
1: जी
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी।

0: दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
2: यह नहीं हो सकता हीरा सिंह भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा। तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा।
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी

0: സുന്ദരിയ തൂങ്ങി.
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा।

0: फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यही कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
5: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
4: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
6: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
5: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु

0: पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
1: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही, मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूँ तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
1: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
0: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था, उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन

0: दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
1: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
0: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
1: क्या?
0: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
1: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
0: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
1: मुझे यही चाहिए।
0: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
1: नहीं।
0: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
1: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
0: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
1: यूं ही?
0: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
1: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
0: अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
1: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
0: पर बेटा ये तो
1: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
0: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
1: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं
1: भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे, आज से, अभी से ये मेरा हुआ, आजा मेरा दोस्त।

0: हाँ,
1: बोलो।
0: टैंक।
1: यस, टैंक। बाथरूम के ऊपर टंकी लगती है ना, तो एक दूसरा चूहा क्या करता है, वो टैंक के ऊपर चढ़कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे गर्मी लगती है ना। जो टैंक है ना, वो टैंक तो ठंडा है ना, टंकी ठंडी रहती है क्योंकि उसके अंदर पानी है। तो एक दूसरा चूहा वहां जाकर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे गर्मी लगती है। ओके, तो ये सब चूहों के बारे में बता रहे हैं लेखक, कितने फनी तरीके से, है ना, कितने मजेदार तरीके से, हमारे डेली टू डेली लाइफ से रिलेटेड। तो उसे शायद बहुत गर्मी लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वे कभी कभी झांक जाती है। बिल्ली है ना, बिल्ली, बिल्ली का मतलब मालूम है ना,
0: हाँ,
1: अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बिल्ली को?
0: कैट।
1: हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं बिल्ली को कैट, सबको मालूम है ना। ये जो बिल्ली है ना बच्चों, ये क्या बोलते, पिताजी क्या बोलते, ये बिल्ली को भी मेरे घर रहती नहीं है, मगर वो आती है मेरे घर में, कभी कभी झांक कर चली जाती है, मेरे घर को ऑब्जर्व करके चली जाती है। बिल्ली आती होगी आपके घरों में, है ना,
0: हाँ आती है।
1: शहरों में बिल्लियां बहुत ज्यादा हैं, आती है। हाँ, तो वही लेखक क्या बोल रहे हैं, वो हमारे घर में रहती नहीं है, मगर वो, उसको घर बहुत पसंद है, इसलिए वो कभी कभी झांक जाती है, कभी कभी वो आती है, झांक कर चली जाती है। झांकना मतलब टू पीप, अंग्रेजी में आप जिसको जो टू पीप बोलते हैं ना, उसको हिंदी में हम झांकना बोलते हैं। कौन झांक कर चली जाती है?
0: बिल्ली।
1: बिल्ली। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। अगर उसका मन होता है तो क्या करती है वो बिल्ली,
0: दूध पी लेती है।
1: हाँ, उसको दूध बहुत पसंद है, घर के अंदर वो दूध पी जाती है। इसलिए आपके घर में बिल्ली है तो ध्यान दीजिएगा। ओके, हमेशा, मगर फ्रिज के अंदर नहीं जा सकती बिल्ली। अगर आपने दूध बर्तन में रखा है किचन के अंदर, तो वो आएगी और दूध पीकर जाएगी। तो कभी अगर मन नहीं हुआ ना बिल्ली को, मन नहीं हुआ उसका कि मैं आज, मेरे को घर के अंदर नहीं जाना है, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं कल फिर आऊंगी, ये बोलकर चली जाती है। देखो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, बिल्ली का मानवीकरण किया है ना। हमको कैसा लग रहा है, ये बिल्ली भी हमारे जैसी ही है। पक्षी भी अगर इस प्रकार से वर्णन किया जाए कि वो मनुष्य के जैसा है, तो उसे कहते हैं मानवीयकरण। ठीक
0: हाँ
1: है,
0: ठीक है।
1: आगे चले।
0: हाँ
1: अच्छा, शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करने लगते हैं, और जैसे ही शाम होती है, मेरे घर के अंदर बहुत सारे वायर हैं, तार हैं, उस तार के ऊपर के चमगादड़ हैं। चमगादड़ मालूम है आप लोग को? बैट, जिसको अंग्रेजी में आप लोग बैट बोलते हैं, उसको हम हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं। वो ना तार के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, ठीक है, मालूम है। वो लोग आकर बहुत बिगाड़ते हैं, वो लोग कृषि को बहुत नुकसान करते हैं, खेती बाड़ी का नुकसान करते हैं, मगर घर में आकर ऐसा नुकसान वगैरह नहीं करते हैं। तो ये सब हमारे घर के आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं, जिसको अपनी डेली लाइफ में हम इनको देखते रहते हैं। तो इसीलिए पिताजी क्या बोलते हैं, जैसे ही शाम होती है, ये चमगादड़ भी आ जाते हैं, ये बैट भी आ जाते हैं, और अपने पर फैला ले, अपने जो उनके जो पंख होते हैं ना, उनके पंख होते हैं, उन पंख को डैने बोलते हैं हिंदी में, वो डैने को स्प्रेड कर लेते हैं और तार के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं। तो जैसे ही वो उल्टे लटक जाते हैं, तो पिताजी क्या समझते हैं कि ये लोग व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए पिताजी बोलते, ये लो, अब ये चमगादड़ भी घर में आ गए, पहले से ही तो बिल्ली थी, पहले से ही तो चूहे थे, कौवे थे, मैना थी, गौरैयों का प्रवेश नहीं हुआ है। ओके, तो गौरैया भी धीरे धीरे आएगी। तो अब ये चमगादड़ भी आ गए, और घर में कबूतर भी है ना, कौन है घर में, एक चमगादड़ भी है, बिल्ली भी है, आम के पेड़ के ऊपर कौन है,
0: पक्षी
1: पक्षी,
0: है।
1: हाँ पक्षी है ना। तो बहुत सारे जीव जंतु लेखक के घर में रहते हैं, मतलब इस कहानी में जो पिताजी हैं उनके घर में रहते हैं। तो दिन भर गुटर गु करते रहते हैं। जो कबूतर है ना, आपने कबूतरों की आवाज सुनी है?
0: हाँ सुनी है।
1: कबूतर को देखा आप लोगों ने? तो कॉमन पक्षी, हम हमेशा देखते रहते हैं। हमारे स्कूल में उल्लू आते हैं, देखिएगा जरूर।
0: हाँ मैंने
1: हाँ,
0: देखा
1: देखा
0: है
1: है आप लोग
0: देखा है।
1: हमारे स्कूल में,
0: छोटा सा उल्लू।
1: छोटे छोटे व्हाइट कलर के, सफेद कलर के उल्लू आते हैं, वो बहुत शुभ माने जाते हैं। उल्लू कौन है मालूम है? हमारी गॉडेस है ना, हमारी देवी है ना, देवी लक्ष्मी के वाहन है उल्लू, तो इसलिए उनका घर में आना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कभी कभी कबूतर आते हैं हमारे स्कूल में भी। अब कबूतर को किसका सिंबल माना जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है मालूम है आपको?
0: शांति।
1: हाँ, वेरी गुड, कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। ओके, कि चारों तरफ शांति होनी चाहिए, कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए कबूतरों को उड़ाया जाता है शांति के प्रतीक के रूप में। सबसे ज्यादा कबूतर आपने एक जगह बहुत फेमस है बॉम्बे में देखा है आपने?
0: बॉम्बे में नहीं गई
1: नहीं
0: हूँ
1: देखा, नहीं
0: कभी।
1: देखा है ना। एक जगह है बॉम्बे में, गेटवे इंडिया के पास,
0: हाँ
1: गेटवे
0: गेटवे
1: इंडिया
0: में।
1: के पास, आपने कभी कभी तस्वीरों में देखा होगा है ना,
0: हाँ हाँ
1: बहुत सारे
0: देखा।
1: कबूतर आते हैं वहां पर, बच्चे और सब लोग उनको दाना देते रहते हैं।
0: हाँ मैं हाँ
1: तो आपने दिलवाले दुल्हनिया नहीं देखी, DDLJ देखी है?
0: हाँ
1: हाँ
0: देखी
1: हाँ
0: है।
1: तो DDLJ में जब शाहरुख उसके जो फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो कबूतरों को दाना देते रहते हैं, है ना। तो
0: हाँ
1: कबूतरों को दाना खिलाना और कबूतरों को किसी ओकेशन पर उड़ाना हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में शुभ माना जाता है, मगर यहाँ पर उल्टा है इस कहानी में। पिताजी क्या बोल रहे हैं, जब देखो ये कबूतर

0: गुटरगू करते रहते, गुटरगू करते रहते। तो ये गुटरगू क्या है?
1: कबूतर की आवाज,
0: हाँ, गुटरगू क्या है तन्मय?
1: कबूतर की
0: कबूतरों की
1: आवाज।
0: आवाज। पिताजी को कबूतरों की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। ओके पिताजी, क्या बोलते हैं? ये सिर्फ कबूतर नहीं है, अब तो घर में छिपकलियां भी। आप छिपकलियां तो सब जगह रहती।
1: हाँ,
0: क्या इसको छिपकलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग?
1: लिजर्ड
0: लिजर्ड्स बोलते हो ना, उसी को हिंदी में छिपकली बोलते हैं। मालूम है आप लोग को?
1: मालूम है।
0: हाँ, तो आपने देखी होगी ना, सब जगह रहती है। कॉमन लिजर्ड तो सभी घरों में रहती है। तो इसलिए पिताजी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? चलो, ये घर में छिपकलियां भी हैं, कॉकरोच भी हैं, बर्रे। बर्रे को उसको बोलते हैं हम लोग तिलचट्टे, कॉकरोच। ओके, और चींटियों, माय गॉड, चींटियों की तो पूरी आर्मी है मेरे घर में। ओके, फौज, फौज मतलब आर्मी।
1: आर्मी
0: बच्चों तो बच्चों, ये फौज जो है ना, ये उर्दू वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड भी है। मालूम है इसे हिंदी वर्ड? नहीं मालूम है, बताऊं?
1: हाँ,
0: सेना।
1: सेना
0: आप समझ में
1: सेना
0: आया? बोलो, सेना,
1: सेना।
0: सेना। हमें उर्दू भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मगर हमें थोड़ी हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है?
1: ठीक है
2: ठीक है।
0: तो पिताजी क्या बोलते हैं? इस घर में तो चींटियों की फौज है, फौज पूरी, जब जहां देखो वहां चींटियों की आर्मी है, चींटियों की सेना है। वो अपने घर के अंदर की बात बता रहे हैं। अच्छा, तो ये सब इसके बारे में ये कौन बोल रहा है कि मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में तिलचट्टे भी है, मेरे घर में बर्रे भी हैं? ये कौन बोल रहा है बच्चों?
1: पिताजी
0: पिताजी।
1: बोल रहे हैं।
0: हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। और एक दिन क्या हुआ बच्चों? दो गौरैया सीधी उनके कमरे के अंदर, पिताजी के कमरे के अंदर आ गई और उनसे बिना पूछे, ये तो पक्षी है, उन्हें बोल सकते हैं क्या? बोलो, हमारी परमिशन पूछ सकते हैं क्या?
1: नहीं बोल
0: नहीं बोल
1: सकते।
0: सकते ना। तो पिताजी क्या बोल रहे हैं? देखो, ये गौरैया सीधी मेरे घर के अंदर आई और इन्होंने मुझसे अनुमति भी नहीं मांगी, और बिना अनुमति के, बिना परमिशन के ये पूरे घर को ऑब्जर्व कर रही है। तो निरीक्षण मतलब देखना, टू ऑब्जर्व। ओके, निरीक्षण। तो कौन कर रहा है ये निरीक्षण बिना अनुमति के?
1: गोरिया
0: गौरैया के
1: गोरिया।
0: बारे में बता रही हूँ मैं आपको। एक दिन क्या हुआ बच्चों? उस मकान में, उस घर में जहाँ पिताजी हैं, माँ हैं और एक बेटा है, उस घर के अंदर कौन आई? दो गौरैया आई, और दो गौरैया बिना किसी परमिशन के आई, बिना किसी अनुमति के आई। ओके, उन्होंने पिताजी से अनुमति नहीं मांगी, इसलिए पिताजी को गुस्सा आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि इन दो गौरैयों ने मेरी कोई अनुमति नहीं मांगी और घर को आराम से देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है कि कहाँ रहें, क्या करें, है ना। तो मकान का निरीक्षण कर रही है, मतलब मकान को देख रही है। कौन देख रहा है मकान को?
1: गौरैया।
0: हाँ, कितनी है गौरैया?
1: दो
0: दो गौरैया। तो इस पाठ का नाम
1: दो
0: दो,
1: गौरैया।
0: हाँ, दो गौरैया। कि वो मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जब बैठती हैं, तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ गई। ओके, तो वो मकान को बहुत सूक्ष्म तरीके से देख रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना घोंसला बनाना है। वो यहाँ पर रहने आ गई हैं। कौन रहने आ गई है अब यहाँ पर?
1: दो दो
0: दो गौरैया।
1: गौरैया।
0: इसीलिए वो बहुत ऑब्जर्व कर रही हैं, एक जगह से उड़ रही हैं, दूसरी जगह जा रही हैं, देख रही हैं, भाल रही हैं कि कहाँ अपना घोंसला बनाए। इसीलिए कभी किसी खिड़की पर जाकर बैठ जाती हैं, कभी किसी खिड़की के ऊपर जा बैठती हैं। ओके, तो रोशनदान, रोशनदान का मतलब खिड़की, खिड़की का मतलब
1: विंडो।
0: विंडो। हाँ, जिसको आप लोग विंडो बोलते हैं, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं खिड़की, और उर्दू में बोलते हैं रोशनदान। तो
1: ठीक है।
0: भूलिएगा नहीं,
1: हाँ,
0: ठीक है? लिखते समय आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, लिखने के समय आप रोशनदान भी यूज कर सकते हैं, खिड़की भी यूज कर सकते हैं, लिखने के समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मगर आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ये उर्दू का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है। ठीक है?
1: ठीक है।
0: ओके, पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा? कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। तो जैसे ही वो आई थी, उन्होंने, गौरैया ने देखा कि उनको कहाँ बैठना है, क्या करना है, उन्होंने देखा और देखकर उड़ गई। ओके, मगर 2 दिन के बाद पिताजी ने क्या देखा? पिताजी ने देखा ऊपर जो फैन होता है ना, पंखा होता है ना, फैन तो अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है? तो फैन को क्या बोलते हैं हिंदी में? पंखा। पंखे के बीच में जो गोला होता है, उस गोले के थोड़े ऊपर थोड़ा स्पेस होता है ना, थोड़ी जगह होती
1: हाँ,
0: है,
1: होती
0: उस
1: है।
0: जगह पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछा लिया। बिस्तर मतलब?
1: बेड।
0: हाँ, ओके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। किसने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया? दो
1: गौरैया।
0: गौरैया ने। जैसे ही वो पहले आई, उन्होंने क्या किया गौरैयों ने?
1: घर का पूरा जांच किया।
0: हाँ, घर का पूरा परीक्षण किया, घर को चेक किया। क्यों चेक कर रही थी वो घर को?
1: घोंसला बनाने के
0: घोंसला
1: लिए,
0: बनाने के लिए ना, कि कहाँ बनाए। और उसके बाद उन्होंने एटलास्ट कहाँ पर घोंसला बनाया?
1: पंखे के
0: पंखे के
1: ऊपर।
0: ऊपर। हाँ, पंखे के ऊपर। पर पंखे के बीच में जो गोला होता है ना, उस

0: बोले के ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है ना, वहां पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछा लिया, ठीक है, और सामान भी ले आई और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। वो अपना सामान सब कुछ लेकर ले आ गई। अब जब घर बनाया तो सामान भी तो होगा ना भाई। अब हम अपना घर बनाते तो क्या हम अपने घर में सामान नहीं
1: रखते
0: रखते
1: हैं।
0: हैं। वो लोग भी अपना सामान लेकर आई गौ रही है, और उन्होंने क्या किया, अपना सामान वगैरह उन्होंने अच्छे से ठीक कर लिया और बैठ कर अच्छे से गाना गाने लगे। ओके, तो वो अपने आप को एंजॉय कर रही। तो कौन एंजॉय कर रहा है अपने आप को,
1: दो घर आई है,
0: गौ
1: दो
0: रही।
1: घर आई है।
0: तो अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद बच्चों।
1: धन्यवाद अध्यापिका जी।
2: अभी तक आप सुन रहे थे हिंदी पाठ। अध्यापिका थे अनुपम रेशमी, छात्राएं थी तन्मया पिल्लई और मुस्कान जिशार। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए. सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार. युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित. विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. दिल्ली उच्च न्यायालय

0: चाइनीज संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल

0: में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NSPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NSPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके

0: में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents declined sharply with improved rail safety.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar. स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद अमित.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरव.
0: थैंक यू अमित एंड सुषमा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड. Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,000 level. Most Asian stock market indices end with gains. And global crude oil prices rise around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी. Sensex 700 अंक से अधिक लुढ़का. Nifty भी 24,000 के स्तर से नीचे दर्ज. प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेजी.

0: Listeners, before we move well into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में जारी तेजी से घरेलू सूचकांकों में आज लगभग 1% तक की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक

0: एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई।
1: Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. The Nifty lost 191 points to settle at 23,996. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell over 1% and the small-cap 100 index dipped over 1.5%.
0: सेंसेक्स पैक की 30 में से 24 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इंडिगो 3.6%, इन्फोसिस 2%, स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.8% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.7%, एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड 0.6% और टाइटन 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे।
1: Broad-based selling was observed in sectoral indices on the BSE. FMCG emerged as the sole gainer, rising 0.4%, while all other sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dropped 2.6%, services slipped 2%, and PSU banks lost over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,780 companies declined, 1,458 advanced, and 180 remained unchanged.
0: अंतरबैंकिक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे की गिरावट से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। सुषमा, अगर शेयर बाजार की बात करें, आज एक और दिन जब बाजार कहीं न कहीं गिरावट के दबाव में नजर आया।
2: बिल्कुल,
0: ये दबाव किस वजह से हो रहा है और बाजार क्यों नहीं इससे उबर पा रहा? हालांकि कल और आज या सोमवार की भी स्थिति अगर हम देखें तो तीनों दिन कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट हावी रही, और अगर बाजार कहीं संभलता हुआ भी नजर आता था तो वो बहुत देर तक टिक नहीं पाया।
2: देखिए, ये जो आजकल के 2-3 दिनों से ये चल रहा है, ये बेरिश ट्रेंड, ये तो साफ आपने भी अपनी खबरों में बोला है कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो टूट गया है और बीच में गोलाबारी शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बीच में मीडिएटर्स आ गए हैं और कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी ना किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कोई अंत लगाया जाए। तो ये जब तक ये ये जो प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट एशिया में, तब तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहेंगे। और इसमें ये भी डर है, अगर आप तेल की कीमतों की बात करें तो जो पहले के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, जब ये कॉन्फ्लिक्ट, जब ये वॉर शुरू हुआ, ये जंग शुरू हुआ मार्च में, फरवरी के एंड में, तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, अमेरिका के भी थे और बहुत सारे देशों के थे, तो वो रिलीज हो गए थे। लेकिन अब इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। तो अवेलेबिलिटी, खैर ये बात नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी जो इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई हैं, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का जो वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है, तो इसका भी डर है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी जो मार्केट्स हैं वो हिल गई हैं। दूसरी वजह ये है कि आज की जो खबर आई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में वो टैरिफ्स लगाएंगे। खैर अभी नहीं, उन्होंने 2 साल की ये पीरियड दिया है कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये 100% और 200% के टैरिफ्स होंगे। तो उससे भी नेचुरली मार्केट्स को थोड़ा सा अगेन फिर से हिल गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
0: फार्मा सेक्टर की बात करिए, उससे संबंधित कुछ खबरें हमारे पास हैं, तो पहले उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमरीका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमरीका में आयात होने वाली सभी

0: जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए तय समय सीमा में संयंत्र और अन्य जरूरी व्यवस्था नहीं करेंगी उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुषमा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अमरीका एक तरफ हम उसका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, उसका दंश झेल रहे हैं, और अगर इस तरह की बातें आती हैं, क्या शेयर बाजार पर सीधा सीधा इसका भी असर पड़ता है?
1: ये तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्षेत्र जो है, एक तो बहुत बड़ा है हमारी उद्योग क्षेत्र में, और दूसरा हमारी जो निर्यात क्षेत्र में, ये वहां भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है फार्मास्यूटिकल्स का। और जो मार्केट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देख रहा है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है, और खासकर जेनेरिक दवाइयों के लिए। ये जो बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि 2 साल के बाद ये होगा, इसको खैर हम थ्रेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर 2 साल के बाद भी वो 100% टैरिफ लगाते हैं तो इसका असर हाँ हमारी उद्योग के ऊपर तो होगा, लेकिन अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर हमारा देश है, और जेनेरिक दवाइयाँ, ये जो हमारी भारतीय दवाइयाँ जो हैं, वो अमेरिका में बहुत कंज्यूम की जाती है, मतलब बहुत खरीदी जाती है, और अगर इनकी आप टैरिफ लगाएंगे तो उनके जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। वैसे भी जो दवाइयां अमेरिका में उनकी जो उनका जो खर्चा है, उनकी जो कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन मेडिसिन्स। कई लोग जो अमेरिकी हैं, अमेरिकन सिटीजन, यहाँ आके दवाइयाँ खरीदते हैं और वहाँ वापस चले जाते हैं, तो ये हम थ्रेट समझ सकते हैं। और लेकिन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को इसके बारे में, फार्मास्यूटिकल जो उद्योग हैं, इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा।
2: राइट, सो अ स्मॉल क्वेश्चन अगेन स्टार्टिंग विद फार्मा एंड द अनाउंसमेंट ओवर नाउ, इट्स 2 years इन द फ्यूचर,
1: यस,
2: नॉथिंग। वी ऑल्सो नो दैट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ कॉमेंट्स दैट आर मेड ऑफ टैक्सेशन ऑफ टैक्सेस, लिविंग टैक्सेस, ऑफ सीज फायर, ऑफ MOUs फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट। वी ऑल्सो नो दैट देर इज अदर देन द शेयर मार्क वॉलेटिलिटी, देर इज अ लॉट वॉलेटिलिटी देयर ऑल्सो,
1: यस करेक्ट।
2: And linking this to the fall in the Indian stock market today in the indices that we saw, if we are looking at a direct correlation, possibly in the future, but also more to understand that even if that is, say, a threat in the future and not the reaction was not to that, the correction that we are seeing, actually is really not a correction. For a correction, to really have to rise and then come down. So this fall, actually a market fall.
1: Yes, yes.
2: And we are seeing it. So can we link it somewhere? Because earlier we've always had reason that either it's a correction or it's the monsoon or there is... And the Ukraine war has somewhere been built in because global supply was not affected that much.
1: Yes.
2: Stances were affected. Here actually, you know, the shoe is pinching a lot, many countries.
1: Yes.
2: How do you see our stock market? And I know it's not about prophecy.
1: Yes.
2: But, you know, seeing the global situation, do you think that we'll somehow be able to build in that volatility and not... have such huge ups and downs, because retail investors actually don't know what to do, the smaller ones, and they're sitting on a fair number of shares, which you keep thinking it might just go up, but over a 6-month period you're seeing that, my God, maybe I'll never recover.
1: Yeah, well, I think first of all, of course, investors have to, even retail investors should take a long-term view, and I think this is normally the advice given by most financial analysts, unless of course you're doing day trading and you're selling and, you know, buying on a daily basis, but retail investors should be taking a long-term view. The long-term view, of course, for India, the growth story remains intact. Now, of course, coming to this issue of the pharma sector and whether it has a direct impact, it is very true, as you point out, that this is a threat which is in the future, 2 years in the future, and from a person, the President of the United States, who has very often made statements, retracted, or even gone worse. And, you know, we have seen it within the Iran war also, and also in relation to the US-India trade deal. But the fact is, the markets, stock markets tend to be, and this is not just in India, but around the world, they tend to be sentiment driven, as they say. And therefore,

0: political tensions, yes, I don't think that there is any getting away from this kind of volatility, because you are going to have the market reacting to these kind of developments. Now, just a few days ago, it looked like the war was settling down. The Strait of Hormuz had opened up. Availability of oil had increased. Prices had come down to below $70. Now we are up once again to over $90. So there is volatility in the geopolitical scenario, and therefore the stock markets are reacting accordingly. But at the same time, retail investors must remember that the underlying growth story of India is intact, in the sense that we have been able to meet various crises with a great, if you take in a macro sense, composure, in the sense that a country that has, we have continued growing at a fairly, we have continued growing at 7%, 7.5%. And despite all the tensions of the Ukraine war, where we had thought that we are going to have so many of us, there were supply chain disruptions, and we had thought that we would have a great deal of problems. So there are still problems. This is not to wish them away, but I think we can tackle them.
1: Shushma, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ बीच में आपने कहा, जैसा कि गौरव ने भी कहा, क्या ये टेक्निकल करेक्शन है या ये सेंटीमेंट का करेक्शन है या सेंटीमेंट कहीं गायब है या वाकई में हमारा या सबको ऐसा सोचना है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है. भारतीय कंपनियों में चाहे जितना भी दम हो, बट फिलहाल के लिए एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो इन सब पे ज्यादा भारी पड़ रही है. क्या यही एक वजह है जो शेयर बाजार को अभी ट्रिगर नहीं लेने दे रही या कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही, या वाकई कंपनी जगत से भी जो पिछले कुछ नतीजे आए हैं वो इतने उत्साहजनक नहीं रहे, या सबका मिला जुला रुझान है? महंगाई भी एक मुद्दा बन सकता है क्या इसमें?
0: देखिए, अब ये मैं नहीं मान सकती कि ये टेक्निकल करेक्शन है, इसको तो आप रहने दीजिए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो उनके साथ ही चल रहा है, जैसे कोई राग चल रहा है और आप वो गायक का तबला साथ में, तो ये स्टॉक मार्केट की वैसे ही चल रही है. तो इसमें ये है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो आपने बात की, वो बिल्कुल आपने, आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड. एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर उद्योग के लिए, हर कंपनी के लिए. और इसको एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेल को हम लोग समझते हैं जो क्रूड ऑयल है, और उसके अलावा पेट्रोल है और डीजल है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं. इसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाती हैं, इसमें प्लास्टिक्स आ जाती हैं. जो जब ये जो यूएस ईरान की वॉर शुरू हुई, एक महीने के बाद हमारे देश में प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे,
1: बहुत तेजी से
0: प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे. और मुझे किसी ने कहा कि किसी कंपनी का नाम लिया, और उन्होंने कहा अरे वो लोग ये तो प्लास्टिक के दाम आ रहे हैं. मैंने कहा भाई अब ये प्लास्टिक के दाम क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स के दाम इसलिए
1: आ पा रहा है
0: क्योंकि तेल की वजह से, उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी है. तो ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है जो एक चीज जो हावी है सारे हमारे उद्योग क्षेत्र में.
1: एफएमसीजी लेकिन आज पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जगाता हुआ नजर आया. एफएमसीजी
0: बिल्कुल,
1: क्या सिर्फ यही है वजह कि ये तो एक मूल जरूरत ही है इस वजह से, या कोई और बात?
0: नहीं, मूल जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन, हमारा डिमांड, ये बहुत बड़ा देश है, और हमारी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये एक कहा जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारी मार्केट, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है. तो ये एफएमसीजी के लिए यही है कि इतनी बड़ी मार्केट है. हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब दाम बढ़ाने होते हैं तो वो पैकेज छोटे कर लेते हैं, तो स्मॉल पैकेट की इशू हो जाती है, और फिर बड़े पैकेज कर लेते हैं. तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत बड़ा है, वाइड स्प्रेड एरिया है.
2: Right, and it's interesting that when we see FMCG and even luxury goods,
0: yes,
2: both segments, our consumption has not really, you know, fallen that much, and,
0: yes,
2: and it's I think it's a sign of maybe overall raising of standard of living.
0: Yes, it. Right. I mean that needs to be analyzed, but it could be
2: right. Moving on to our next story, Eternal Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue from operations rose by 182%.

0: एकदम नीचे आ जाएंगे हम, उसके बाद हमें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सोना जो है, जो अभी भी गोल्ड वो सेफ हेवन एसेट है और ये रहेगा, और जब तक क्राइसिस रहेगा दुनिया भर में तो इसकी प्रॉब्लम्स रहेगी, इसके दाम बढ़ेंगे।
1: सुषमा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: एब्सोल्युटली, थैंक यू सुषमा वंस अगेन। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड। सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 700 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद गेन्स। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 4%। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसको आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन में, और सबसे पहला गीत जो आपने सुना वो है अनजाना फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 11:12:14। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

न जाने तेरे छूने से मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे तेरी दिल की धड़कन मेरे दिल में कोई गजल गा रही हो।

चांद से क्या पूछूं तेरी सादगी की तारीफ, चांद से क्या पूछूं तेरी सादगी की तारीफ, वो तो खुद दाग छुपाए बैठा है तेरी रोशनी के आगे।

ये रातें कितनी हसीन हैं, ये रातें कितनी हसीन हैं जानते हो क्यों? क्योंकि ये मुझे तुमसे मिलने वाले हसीन ख्वाबों का तोहफा जो देती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

इस दिल में दर्द भी तो तुमने ही जगाया है, इस दिल में दर्द भी तो तुमने ही जगाया है। अजीब दस्तूर है इश्क का, तुमसे गिला भी है और तुम ही पर ये प्यार भी आया है।

0: दोस्त, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। एक बजकर 10 मिनट पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि एक गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे इस चैंपियनशिप के मुख्य दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एपे खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government has prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
2: Sarkar, NEET paper leak.
4: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
3: Defence Minister Rajnath Singh has flagged in Samudra Pradakshina, the first ever tri-service all-women circumnavigation sailing expedition through video conferencing. 9 women officers from the Army, Navy and Air Force returned to Mumbai aboard the Indian Army sailing vessel Triveni after completing a 314-day voyage covering more than 25,000 nautical miles across 4 oceans. Union Minister of State for Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that the government has drawn up a roadmap to achieve 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047 under the Nuclear Energy Mission. In a written reply to the Lok Sabha, Dr. Singh said the country's installed nuclear power capacity is expected to increase from the present 8.78 gigawatts to around 22 gigawatts by 2031-32. Union Minister of State for Communications Dr. Chandrasekhar Pemasani has informed the Lok Sabha that the Bharat 6G Alliance, an industry and academia-led body, has expanded to 90 members as of the 15th of this month. In a written reply, Dr. Pemasani said the alliance comprises telecom service providers, equipment manufacturers, startups, research and development institutions, academia and other stakeholders representing a broad and diverse telecom ecosystem. Ayush Minister Pratap Rao Jadhav has inaugurated Prakriti Cafe at Ayush Bhavan in New Delhi, the ministry's first workplace initiative to promote healthy dietary practices based on the Ayush Ahar concept. Speaking on the occasion yesterday, Mr. Jadhav said the cafe reflects the ministry's vision of promoting wellness. Reserve Bank of India has said the Indian economy has navigated global uncertainties well and continues to remain among the fastest growing major economies in the world. In its July bulletin, the RBI said healthy domestic demand and resilient industrial and services sectors have sustained economic momentum despite challenges posed by geopolitical uncertainties and global supply chain pressures. On the second day of the four-day 16th BRICS Health Ministers meeting in Chandigarh, member nations discussed enhancing cooperation in digital health, traditional medicine,

दोस्तों, समय हुआ है 1:11:17, ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मौसम में आज यूं ही मदहोशी नहीं छाई है, मौसम में आज यूं ही नहीं मदहोशी छाई है, सुना है आज वो मेरे शहर में आई है।

की भला चाहत किसे है अब, मंजिल की भला चाहत किसे है अब, तुम मिल गए तो यकीन मानो ये सफर मुकम्मल हो गया।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दुनिया के सारे दर्द पल में भूल जाते हैं, दुनिया के सारे दर्द पल में भूल जाते हैं जब हम सिमट कर तेरे आगोश में आते हैं।

इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, और तुम्हारे साथ एक नया आशियां बसाने का दिल करता है।

जुदा हो गए हम क्योंकि जमाने को हमारा मिलना नहीं था मंजूर, पर रूह से रूह का रिश्ता आज भी शायद उतना ही गहरा है।

करीब आ एक बार फिर के दिल की धड़कनें सुन सकूं, करीब आ एक बार फिर के दिल की धड़कनें सुन सकूं, तेरी आंखों में डूबकर मैं अपने सारे गम भूल सकूं।

0: 10 मिनट पर फिर से आपसे मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आज की
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान स्कोपे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में आसियान सचिवालय के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक

समय हुआ है 2:11 और 12 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूँ जैसे कि मैंने भी बताया रात सुरमई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मैं ही नहीं तेरी चाहत में पागल यहाँ, मैं ही नहीं तेरी चाहत में पागल यहाँ, तू भी बेकरार है मेरी तरह, ये मैं नहीं तेरी आंखें बयां करती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ अंजू। लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत बयां करते हैं, लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत बयां करते हैं। कैसे कहें हम तुझे कि हम तुझे खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं।

दिल की तख्ती पर कुछ इस तरह नाम लिखा है तुम्हारा, दिल की तख्ती पर कुछ इस तरह नाम लिखा है तुम्हारा, जीते जी न भूल पाएंगे तुम्हें, चाहे बदल जाए ये जहां सर।

दोस्तों, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 3:10 पर भारती रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पर। शुभ रात्रि, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण

0: और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉ. आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएले को सौंपी। इस सहायता में पीपी किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भी अगले कुछ दिनों में पहुंचाई जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड में ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 खेलों को शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। PM Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई खूबसूरत दुआ पूरी हो गई हो। उनकी मुस्कान हर पल को यादगार बना देती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है हमराही. सच्चा प्यार दूरियों का मोहताज नहीं होता, दिलों का रिश्ता धड़कनों की आवाज नहीं होता. और जब भी एक दूसरे को पहचान मिल जाती है तो सच्चा प्यार हमेशा साथ होता है.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार की हर आहट दिल में नई उमंग जगा देती है। प्यार की मधुर धुन जीवन को खुशियों से भर देती है।

जब किसी के लिए दिल में सच्चा अपनापन हो तो उसका नाम हर दुआ और हर मुस्कान में बस जाता है। और समय कह रहा है कि अब आपसे मैं अनुमति ले लूं, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा उसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को

0: मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उत्तर मैसिडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोवस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं और ये गर्व की बात है कि स्कोपे में आकाशवाणी संवाददाता शुभ्रसी महापात्रा से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले से ही प्रभावित थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका सम्मान और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राज्य के यात्रा पर उत्तर मैसिडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरिड झील का भी दौरा करेंगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएलो को सौंपी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all

एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो गया है 4:11 और 40 सेकेंड। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अंदाज अपना अपना फिल्म के इस गीत के साथ, जिस गीत को अपनी आवाज से सजाया है विकी मेहता ने।

अभी आपने गीत सुना विक्की मेहता और बहरोज चटर्जी की आवाज में। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार शिव हरी और गीतकार आनंद बख्शी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और अगला गीत सुनते हैं फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज में.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जोश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है मत होश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है कर ले ना किसी से प्यार कहीं दिल अपना दीवाना लगता है मत होश हवा मत वाली

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म संगीत से अनुराधा पोटवाल और पंकज उदास की आवाज में, संगीतकार आनंद मिलन और गीतकार संतोष आनंद।

और समय कह रहा कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि मैं जल्द लौट के आऊंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए ले रही हूँ आपसे अनुमति और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसद टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के

0: सांसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाओकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और यह गर्व की बात है। इस स्कोपजे में आकाशवाणी की संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाओकोवा ने कहा कि वह भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरिड झील का भी दौरा करेंगी। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडेन डुएल को सौंपी। इस सहायता में पीपीई किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में मारे गए 4 अमरीकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को सलामी दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे गए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
2: Sarkar, NEET paper leak.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rule should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
1: Parliament witnessed repeated disruptions for the 3rd consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम बहुत सुहानी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

साथ मिलकर चलने से हर रास्ता आसान हो जाता है। आइए सहयोग, प्रेम और विश्वास के साथ सफलता की ओर बढ़ें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन